दुखी ब्रह्म न कोई एक घर माठिए दलित्री अति थिए बालक तीन पुत्र उनका आपु दुई दंपति। सलाह।

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचार को सहयात्री।